من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

केतिरियूं चिटा निसरी चुकियूं आहिनि ऐं केतिरी चिट रहियल आहे ऐं कहिड़ी कहिड़ी उन जा नाला अवां असांखे ज़रूरु ॿुधाईंदो त काफ़ी नाला आहिनि चिटनि जा पोइ चार पंज जेके चिटनि जा नाला आहिनि उहे अव्हांखे ॿुधाइणा आहिनि ऐं उन में तव्हां असांखे इहो ॿुधाईंदो त कहिड़ी चिट निसरी चुकी आहे ऐं केतिरियूं चिटियूं कहिड़ियूं रहियल आहिनि तव्हां असांखे ॿुधायो अथव जेके दोस्त प्रोग्राम में शामिलु थियणु चाहिनि था या जंहिं बि पंहिंजो रेडियो सेट हाणे हाणे आन कयो आहे त असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं GFM88 जे ID ते तव्हां असांजे फेसबुक ते बि सवाल जो जवाबु ॿुधाए सघो था ऐं असांजो नंबर आहे मोबाइल स्टूडियो में आन आहे हिन वक़्तु बि आन आहे तव्हां कॉल करे असांखे पंहिंजे हिन सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था असांजो नंबर आहे 0332-1322-88 ऐं तव्हां SMS ज़रिए बि इनबॉक्स में मैसेज करे सघो था मैसेज करण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो उते तव्हां LRK लिखी स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो सवाल जो सही जवाबु असांखे सेंड कंदो 888-1 ते जी हा त असांजो लाइव कॉल जो जेको नंबर आहे स्टूडियो में मोबाइल आन आहे तव्हां असांखे उन ते बि पंहिंजो नालो ऐं सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था असांजो नंबर आहे 0332-1322-88 साईं मुंहिंजा वतन सां मुहबत ईमान जो हिसो आहे हर इंसान खे पंहिंजे वतन सां मुहबत हूंदी आहे इहो फितरी अमल आहे इंसान जंहिं मिटीअ ते जनम वठे थो उहा मिटी उन जी माउ जो रुतबो वठे थी ऐं हर नेक ऐं साले ॿार पंहिंजे माउ सां लाज़वाल मुहबत कंदो आहे असां जॾहिं पंहिंजे वतन जूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं तॾहिं वतन जी मिटीअ जी ख़ुशबू असांजे मन खे मुअत्तर करे छॾींदी आहे छो त ज़िंदगी जो नाम ज़िंदगी जो रुतबो मान ऐं शान वतन जे धरतीअ सां आहे पंहिंजो वतन प्यारो पाकिस्तान ज़िंदाबाद।

जी हा साईं, मुंहिंजा प्रोग्राम आहे रोशन सुबुह, ऐं रोशन सुबुह में असां अव्हां खां सवाल पुछियो आहे त गर्मीअ में गर्मी जे मौसम में कुझु चिटूं हूंदियूं आहिनि, जेके चिटूं भॼंदियूं आहिनि या चिटूं निसरंदियूं आहिनि, उन्हनि जा अव्हां खे नाला ॿुधाइणा आहिनि त हिन वक़्तु केतिरियूं चिटूं निसरी चुकियूं आहिनि ऐं केतिरियूं चिटूं जेको आहिनि उन्हनि जा नाला ॿुधायो त केतिरियूं या बाक़ी पोइ ते रहियल आहिनि गर्मी जे मौसम में। तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था, असांखे पंहिंजे मोबाइल जे राइट ऑप्शन में बि तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था, SMS ज़रिए, मोबाइल ज़रिए बि तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था, ऐं फेसबुक ज़रिए बि तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था। साईं, मुंहिंजा असांखे ख़बर आहे त मायूसी कंहिं बि सूरत में सुठी नाहे, मुंझारा अचणा वञणा आहिनि, असां मुंझारनि खां छुटकारो हासिलु करे सघूं था।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: Abbas Kirman dhamakan sa gunji uthya. Rusi khabru idare mujib Iran Kashmir mata udam kandar Amerika jahaz kiraye vidho. करमान में टॉम हॉक मिसाइल के फिजा में ही तबाह कर छो अमरीकी फौज के सेंट्रल कमांडर के चवण है ईरान खिलाफ 13 दिन वाली कार्रवाई मुकम्मल कई वही है हमलन जो मकसद पासदार इनकलाब तरफा तजारती जहाजन हमले की खतरे के घिंटी करना है।

0: तकलीफ़ ना पौती हाने हमलन की शिदत वधाई वेंदी ऑपरेशन एपेक्स फेवर का वड़ा हमला कया वेंदा। तिजारती जहाजन जो मकसद नुकसान ए जंग ते थींदड़ खर्च ईरान के मंजद असासन मां काटी वेंदी। सऊदी अरब से सिविल एटमी मुआहदो मुकमल तौर इब्राहिम मुआहदन में सऊदी की शमूलियत से मशरूत है। अमरीका सऊदी सिविल एटमी मुआहदो रुगो गैर फौजी इस्तेमाल आया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो सऊदी वलीअद मोहम्मद बिन सलमान से फोन ते राबतो। सऊदी अरब के बहरी जहाजन ते हुसैन के हमलन की सख्त लफ्जन में मज़ामत। सऊदी अरब से मुकमल एके जो इजहार। शहबाज शरीफ जो फील्ड मार्शल ए कौम सऊदी क्यादत ए आवाम से गड बीठल है। सऊदी अरब टैंकर से हमला कें कबूलन जोगा ना है। हमला आलमी कानून की सीधी भंकड़ी अड़न कदम से इलाकई के सलामती अमन के नुकसान थी सके तो। पाकिस्तान सऊदी अरब के सलामती खुद मुख्तियारी खुशहाली की हिमायत जारी रख। सऊदी वलीअद पारा पाकिस्तान के मुस्तकिल हिमायत ए वेझन लागा पंजी साराह कई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राबते जे लाइ 0320180003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी।
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 10:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Ashik Honda Showroom Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Chopper at Mat. Aimba Akhtiar 3S Dealer. Ashik Honda Motors Mehrapur. Jite nai motorcycle ji sale. कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-335-69
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न अदा
6: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड रंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुख्य बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836
8: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए FM 94

सुवाल पुछियो आहे त गर्मियुनि जूं जेके चिटियूं थींदियूं आहिनि उन्हनि जा नाला ॿुधायो ऐं केतिरियूं चिटियूं निसरी चुकियूं आहिनि ऐं केतिरियूं बाक़ी रहियल आहिनि। तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था मोबाइल जे SMS ज़रिए बि। मोबाइल ते SMS ज़रिए अव्हां खे मोकिलण जो आसान तरीक़ो, मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, उते LRK लिखी स्पेस ॾींदो, पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो सही जवाबु लिखी करे अव्हां सेंड कंदव 888 ते। ऐं तव्हां असांजे फेसबुक जी GFM88 जी ID ते बि तव्हां असांजे फेसबुक ते बि पंहिंजा नाला मोकिले सघो था, सवाल जो सही जवाब बि, ऐं स्टूडियो जे मोबाइल नंबर ते कॉल करे बि पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। ऐं साईं मुंहिंजा कुझु दोस्तनि जा नाला जिन असांखे सवाल जा सही जवाब ॾिना आहिनि, ऐं सवाल जो सही जवाबु असांखे अव्हांखे आख़िरि में ॿुधाईंदासीं, पर दोस्तनि जा नाला अव्हां ताईं ज़रूरु पहुचाईंदासीं, जो नाला घणा आहिनि। अब्दुल गफ़ूर जतोई ऐं अली ख़ान नारे जो, लखमीर नारे जो ॻोठु अली हसन जतोई खां, ऐं हाजी सोराब मंगरियो, नज़र मोहम्मद मंगरियो ऐं फरहान अली मंगरियो ॻोठु सचिरणो मंगरियो लॻे बकापुर खां, फ़क़ीर महरम अली जतोई ॻोठु आगा ख़ान जतोई खां, इमदाद अली जतोई, अब्दुल ख़ालिक जतोई, मुबशर जतोई, फारूक हैदर जतोई ऐं किफ़ायतुल्ला जतोई दादू खां, हाफिज़ मुनीर खुसो लाड़काणे खां, अमीन मरी हाले पोटरा स्टाप खां, ऐं चनेसर बिहण आज़ादु बिहण मोरे खां। दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। ऐं साईं मुंहिंजा

0: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94
2: रोशन सुबह में असि अवां सवाल कयोसी त जेका ही गर्मियुनि जी मौसम आहे गर्मी मौसम में चिट थींदी आहे चिट काफ़ी क़िस्म जी हूंदी आहे उन्हनि जा नाला हूंदा आहिनि उहे नाला असां अवां खां पुछियासीं त पंहिंजो चिटां कहिड़ियूं कहिड़ियूं निसरी चुकियूं आहिनि ऐं कहिड़ियूं रहियल आहिनि उन में काफ़ी दोस्तनि सवाल जो सही जवाब ॾिनो आहे ऐं कुझु नाला दोस्तनि जा असां खणी बि चुका आहियूं पर अव्हांखे ॿुधाईंदासीं त चिटनि में ड्रब बि आहे जंहिंखे असां सर बि चऊं ऐं लओ बि आहे तिर बि आहे काफ़ी निसरी चुकियूं आहिनि ऐं बाक़ी जेके तमामु वॾे में वॾियूं जेके हिन चिटूं उहे रहियल आहिनि जंहिंमें कांह जो जेको ॿूढ़ो हूंदो आहे उहो निसरंदो आहे तक़रीबन 18-20 अगस्त ते निसरंदो आहे त कांह जी गर्मी ॿुट एतिरी हूंदी आहे चवंदा आहिनि त कांह कराए दांह ऐं आख़िरि में सर बि आहे ॿूढ़ो बि आहे जेको नाड़ो बि आहे तिर बि आहिनि बहरहाल काफ़ी अहिड़ियूं जेको आहे चिटूं आहिनि जेके निसरंदियूं आहिनि जेके ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि त उन सां मौसम थधी थींदी वेंदी आहे ऐं मौसम सर्दीअ तरफ़ रवां दवां थींदी आहे त इहे चिटनि जा नाला आहिनि जेके ॿहिराड़ीअ जा माण्हू अक्सर सुञाणींदा आहिनि उनखे शहर जो माण्हू न सुञाणे सघंदो पर ॿाहिर जो माण्हू सुञाणींदो त ड्रब छाहे तिर छाहे लओ छाहे कांह सर ॿूढ़ो नाड़ो बहरहाल काफ़ी इहे निसरियूं आहिनि निसरी चुकियूं आहिनि पंहिंजो इहे चिटूं ऐं कुझु रहियल आहिनि इहे हुनजा नाला हुया पर साईं मुंहिंजा इन्हनि पंहिंजो चिटनि सां गॾु वण जी पोखाई ज़रूरी आहे ऐं उन सां गॾु वणनि खे कटणु न खपे जेके वण असांजा ॿेला आहिनि कटिजी चुका आहिनि ऐं काफ़ी माण्हू वाहनि तऊं ॿेलनि मां वण कटनि था वण कटण खां पोइ काफ़ी त हिकिड़ो पंहिंजो फर्नीचर त ठहे पियो पर असां जेका आलूदगी थिए थी उहा ख़तमु न पई थिए उहा वधंदी वञे पई ऐं वणनि लॻण सां पंहिंजो मौसम बहितर थींदी आहे ऐं जेको आहे सो जेके हवाऊं लॻंदियूं आहिनि तूफ़ान ईंदा आहिनि ॿेला जेके आहिनि उन तूफ़ान खे रोकण में मदद कंदा आहिनि बहरहाल गुल ॿूटा वण असांजे साह खणण लाइ बि तमामु बहितरीन आहिनि उन जे करे कोशिशि कयो त घणे खां घणा वण पोखियो घणे खां घणा ॿूटा पोखियो जंहिंमें गुल हुजनि गुलाब हुजे राबेल हुजे चमेली हुजे जेतिरो थी सघे वण पोखियऊं जेतिरो थी सघे गुल पोखियऊं ॿूटा पोखियऊं त उन में असांजी आलूदगी ख़तमु थींदी ऐं असांजे साह में आसानी थींदी।

जी साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में असांजे सवाल जो जेको सही जवाबु हुयो त काफ़ी मौसम जेको आहे सो गर्मीअ में चिटरां थींदियूं आहिनि, जेके चिटरां ख़तमु थी चुकियूं आहिनि, जेके निसरी चुकियूं आहिनि, जंहिंमें ड्रब, तिर, लहो ऐं बाक़ी रहियल कांह, सर, ॿूड़ो जंहिंखे चऊं, नाड़ो आहे, काफ़ी चिटूं रहियल आहिनि, कुझु गुज़री चुकियूं आहिनि। इहे गर्मीअ जूं निशानियूं हूंदियूं आहिनि ऐं उन में कुझु दोस्त नाला बि कुझु असां वरितासीं, कुझु नाला रहियल आहिनि अवां ताईं पहुचाईंदासीं। जंहिंमें दोस्त आहिनि आसिफ़ नवाज़, महर चक कचे खां, हाफिज़ मोहम्मद हनीफ़ रिंद, प्यारो रिंद, ॻोठ जीअंद रिंद जेकाबाद खां, महबूब शर, रिज़वान अली, इमरान अली शर ऐं नंढड़ी उज़मा ऐं असमा शर ठरी मीरबाह खां, ऐं रियाज़ जरवार ॻोठ आलम खान जरवार खां, ऐं मीर खादिम हुसैन मलिक रोहिड़ी सखर खां, ऐं मोहम्मद शरीफ़ छुटो, नादर अली छुटो, दरेजी बलोचिस्तान खां, आसिफ पहंवर, बशीर पहंवर उनड़ चौक खां, ॻोठ मोलड़े माशी खां, लॻ बकाबुर खां, ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तियार अली, ज़हीरबा सोलंगी, नंढड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी, ॻोठ कंगन खां, गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर, ॻोठ अहमद खान लाशारी खां, नियाज़ अली लाशारी, नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी, ॻोठ हसू जतोइन खां, मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद नसरुल्ला जतोई, ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां, अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर, अहसन अकबर, फहद अकबर, अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो, ऐं ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां, सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी, यारमंद करोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां, फ़ौजी इरशाद अली महेसर। त समिन अवां दोस्तनि सभिनी जी महिरबानी, ऐं आख़िरि में शमन अली मीराली जो ख़ूबसूरत नगमो आहे, अवां दोस्तनि जे नाओ पिया कयूं।

जी हा समय शमन अली मीरा अली जी कलाम ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंचे पे पांजे पुजाणी ते हयाती रही त इंशाल्लाह वहां सां मुलाकात जरूर थींदी तेसी ताईं पांजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो के दींदा इजाज़त अल्लाह ने कहबा।

अमेरिका ईरान ते हमला तेज करे छड़िया आवाज बंदरगाह अब्बास करमा ने कशम में धमाका रूसी खबरू इदारे मूजिब ईरान कशम मथा उडाम कंदड़ अमेरिकी जहाज किराए विधो करमान में टाइम हाक मिजाइल के फिजा में भी तबाह करे छड़ियो। अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड जो चवण है ईरान खिलाफ 13 डी वारी कार्रवाई मुकम्मिल कई वही है। हमलन जो मकसद पासदार इनकलाब तरफा तजारती जहाजन हमले के खतरे के घट करना है।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त लॻे थो त ईरान खे घणी तकलीफ़ नाहे पहुती। हाणे हमलनि जी शिदत वधाईंदासीं ऐं ऑपरेशन खां वॾा हमला कया वेंदा। तजारती जहाज़नि जो नुक़सान ऐं जंग ते थींदड़ ख़र्च ईरान जे मंझंदि सासन मां काटी वेंदी। सऊदी अरब सां सिविल एटमी मुआहिदो मुकमिल तौर इब्राहिमी मुआहिदनि में सऊदी जी शमूलियत सां मशरूत आहे। अमेरिका सऊदी सिविल एटमी मुआहिदो रुगो गैर फ़ौजी इस्तेमाल लाइ आहे। स्कूल एजुकेशन खाते जे डीजी मॉनिटरिंग ऑफिस में 1,92,00,000 खां वधीक हिकु करप्शन जो इंकशाफ़। ऑडिटर जनरल ऑडिट रिपोर्ट कार्रवाई लाइ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी खाते ॾांहुं उमाणे छॾी। ऑडिट में ॿिनि ऑफिसरनि खे 9,19,000 रुपया एग्ज़ेक्टिव अलाउंस, 28,25,000 रुपियनि जी अलाउंस में 9,33,000 रुपियनि जी पघार ऐं अलाउंस अदायगियुनि ते एतिराज़ कयो वियो। ऑफिस जे मुंतकिलीअ ते 39,98,000 बिल्डिंग जे भाड़े जी मद में 53,00,000 पेट्रोल स्टेशनरी प्रिंटिंग ऐं ट्रांसपोर्ट ख़र्चनि में माली ज़ाब्तनि जी भञकड़ी बाबति ऑडिट में निशानदेही। आईटी सामान मशीनरी ऐं फर्नीचर जी मरम्मत जे ख़र्चनि बाबति बि ऑडिट रिपोर्ट में एतिराज़ शामिल।

खाणोट वासी पोरेत नौजवान कंडियारो भरसा फुर मज़ाहमत ते कतल वारसन जो मंजूर आबाद में इंडस हाईवे ते धरणो ट्रैफिक मुअत्तल वारसन चयो त हथियारबंदन ट्रक रोके नौजवान एजाज खोसो के गोलियूं हणी कतल कयो नौजवान जा कातिल गिरफ्तार करे इंसाफ कयो वञे।

सोमबाड़ी अगवा का ज्याती जो निशानो बनाए बेदर्दी से कतल जवाबदार पुलिस के मुबैना मुकाबले में मार वो क्या माड़ी में समुंड वेझो बोड़न मां दुआ धीअ उमर जो लाश मिलो बाड़ी के मुबैना ज्यादती जो निशानो बनाए कतल कदड़ जवाबदार मुकाबले में मार वो डीआईजी दखण है सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तारी लाए पहुंतल पुलिस टीम से जवाबदार फायरिंग कई जवाबी फायरिंग में मार वो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाली से ज्यादती की तस्दीक की है।

हिक वण सिंध अमर जे नाव केटीए न्यूज़ ऐं कावस जे वण पोखण वारे सॾ खे भरपूर मोट सिंध खे मौसमियाती तब्दीली जे असरनि खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारे सॾ ते सिंध वासियुनि ऐलानियल तारीख़ अॻु ई वण लॻाइण शुरू करे छॾिया। केटीए न्यूज़ ऐं कावस पारां 24 खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण जो सॾु ॾिनल।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300338569।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
2: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300320437202-0242460100।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320018-00003।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

त वञा वेठा प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर जुमे जे ॾींहुं ऑनियर कयो वेंदो आहे 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं, जेको जी एफ एम नेटवर्क तां ऑनियर थींदो आहे, जंहिंमें असां सखर लाड़काणो मीरपुर ख़ासि मटियारी मातली मेहरापुर ऐं सकरंड ऐं मोरो जा बहितरीन प्यारा प्यारा लिसनर्स गॾु हूंदा आहिनि ऐं हिन प्रोग्राम में हुननि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं अवां पारां मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजिस ऐं तव्हांजी पसंदि जी चूंड मूसीकी। त मुंहिंजा मिठा से ज़िंदगी में हर माण्हू कामयाबी हासिलु करण त चाहे थो, पर कामयाबी सिर्फ़ु ख़्वाहिश सां न पर मुनज़िम मनसूबाबंदी महिनत ऐं मुस्तक़िल मिज़ाजीअ सां हासिलु थींदी आहे। जेकॾहिं असां मां को बि कम बिना रिथाबंदी ऐं बेतरतीबी अंदाज़ सां कंदो त उन जो नतीजो बि अक्सर इत्मिनान बख़्श नाहे निकिरंदो। सोचे ॾिसो, जेकॾहिं हिकु हारी सही वक़्त ते ॿिज न पोखे, पाणी ऐं भाण जो मुनासिब बंदोबस्तु न करे, त छा हू सुठे फ़सल जी उमेद रखे सघे थो? बिल्कुलु बि न। साॻी तरह ज़िंदगीअ जे हर शुबे में तरतीब, वक़्त जी पाबंदी ऐं ज़िमेवारी कामयाबी जो बुनियादु आहे। मुनज़िम अंदाज़ में कमु करण सां न रुॻो वक़्त जी बचति थींदी आहे, पर कम जे मयार में बि बहितरी ईंदी आहे। इंसानु परेशानियुनि खां बचंदो आहे, पंहिंजा मक़सद आसानीअ सां हासिलु थी वेंदा अथसि ऐं हर क़दम सोचे सम्झी खणंदो आहे। जॾहिं त बेतरतीबी, सुस्ती ऐं लापरवाही असांखे नाकामी, मायूसी ऐं वक़्त जे ज़ाया थियण ॾांहुं वठी वेंदो आहे। तंहिं करे अचो त अॼु खां वठी उहो अज़म करियूं त हर कमु शुरू करण खां अॻु उन जी सही रिथाबंदी कंदासीं, वक़्त जी अहमियत खे सम्झंदासीं ऐं पंहिंजूं ज़िमेवारियूं ईमानदारीअ सां निभाईंदासीं। यादि रखो मुंहिंजा मिठा साईं, त मुनज़िम ज़िंदगी न रुॻो कामयाबी आणे थी पर इंसान जी शख़्सियत खे बि बहितर बणाए थी।

इश्क हो चर्चो न हो रोशो न हो तो मुझा मिठा सिंह तुम असि प्रोग्राम में शामिल एसएमएस करने तरीकेकार सहलो है आसान है पाँच मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वो एम आर ओ लिखो स्पेस दिए लिखो पाँच नालो पाँच गोठ या शहर जो नालो लिखी कर मोकलो असान 888

प्यारो भा आई अब्दुल रहीम फ्राम सखर अदा अब्दुल रहीम कड़ा हाल नवाजा ठीक है तबियत सही है अवाज उम्मीद अरब करीम तुम सभी मुझे भारत ने मेहनत आखिर खिरत कई होंगी तवाज स्पेशली अस खोड़ सारी दुआं क्या छो जो तुम प्रोग्राम में हमेशा शामिल थी मोहब्बत भरे मैसेज कह मौला खुश रख तवें अदाजन चवन था असलम अदा सही कैसे हो तो वालेकुम असलम भा मुझा मैं बिल्कुल ठीक ठाक आया अदाजन के शो पसंद अचे पे चवन था तो हि शो नाइस है मेहरबानी अदाजन दुआ भी कन पाई चवन था मैडम सुमेरा कब आएगी अदा मुझे सही बिल्कुल मैडम अची वी कें जी मसरूफियात सबब फिल वक्त असें जी एफ एम नेटवर्क का डिस्कनेक्ट लगी पी है जी उन मसरूफियात खत्म थी वी तो वरी असाजे सथ में शामिल थी वी उन कुछ इंतजार अना है कुछ तक अधिक इंतजार करणो पवो मेहरबानी है अदा अब्दुल रहीम तवी कुर्ब तवजों मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए याद रहद असा गड है उन्हड़ चौखा आसिफ पमहर बशीर पवर चवन था अदा अस्सलाम वालेकुम कड़ा हाल भा मुझा मैं बिल्कुल ठीक ठाक आया तवाज दुआं मुसा गडन अदा असा भी तवाज दुआ गोयूँ तक स्पेशली मैं प्रोग्राम में भलीकार चवं तो मुख्य इं लगी रो है तुम पे दफो मुझे इन शो में शामिल थे आज जैसे लाइ लख कुर्ब तवजा गोठ मोहम्मद इब्राहिम संदीलो का मोहम्मद हारून संदीलो प्रोग्राम बुधी रो है अदा हारून कड़ा हाल नवाजा ठीक है उम्मीद है तुम बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अदाजन चो है रऊफ़ मक्सी जो असा के सॉन्ग बुधा तो हाजिर मुझा मिठा रऊफ़ मक्सी जो सॉन्ग अवा के जरूर बुधाईंदी तो मुझे सही अड़े तरीके से तुम भी असो में शामिल थी सको था शामिल थे तरीकेकार एक दफो बीह तुम्हें हल तो मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वनो एम आर ओ लिखो स्पेस दियो स्पेस का लिखो पाँ नालो पाँच गोठे शहर जो नालो लिखी कर मोकिल असा 888

0: उमेर चंदन जो खूबसूरत आवाज ए अवान जो सुंदर सवातू तो मुझा मिठा सही दोस्तों जहाँ मैसेजेस भी करे वा उसे भी शामिल कह हल्दी पर वक्त वक्त थो है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो हल्दी ब्रेक की तरफ ब्रेक का वापस इंदी वापस अची कर बुधाईंदे अवज पसंद की चूंड मौसीकी तवाजा मैसेज पे प्रोग्राम की सूह बढ़ाई
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569 जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नौ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी मुंहिंजनि मिठनि भाइरनि ऐं भेनरुनि खे प्रोग्राम म्यूज़िक मसीमी भलीकार त मुंहिंजा बीठा अथई तव्हां असांजे शो में शामिल थी सघो था बज़रिए SMS करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे आसान आहे पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं आर ओ लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहा 888 ते त दोस्तनि जा कुझु मैसेज आहिनि उन्हनि खे बि असां शामिल कंदा हलूं उस्ताद अहमद बख़्श वीसर विलेज दंगल खान वीसर खां ऐं चवनि था प्रोग्राम बहुत अच्छा है बहितर चल रहा है और म्यूज़िक सिलेक्शन फैंटेस्टिक है महिरबानी अदा अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे ऐं तव्हांखे असांजो प्रोग्राम पसंदि अचे पियो असांजो म्यूज़िक सिलेक्शन तव्हांखे पसंदि अचे पई उनजे लाइ तमामु घणा असां तव्हांजा शुक्रगुज़ार ॻोठ दूरो भेण खां शौकत अली भेण पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो नादर अली भेण ऐं अली गुल भेण अदा शौकत नादर ऐं अली गुल कहिड़ा हाल आहिनि अव्हांजा ठीकु आहियो तबियत सही आहे अव्हांजी अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखंदो आबाद हुजो मुंहिंजा मिठा साईं पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे शो में शामिल थिया आहियो स्पेशली मुंहिंजे तरफ़ खां तव्हांखे खोड़ दफ़ा भलीकार वेलकम ऐं ख़ुशि हुजो अहिड़े तरीक़े सां तव्हां असांजे शो में शामिल थियो था मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थिए थी कुर्ब तव्हांजा अली नवाज़ इस्लामी पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो ऐं चवनि था त शो तव्हांजो ब्यूटिफुल आहे त महिरबानी मुंहिंजा मिठा ख़ुशि हुजो स्पेशली मां तव्हांखे भलीकार चवां थो ॻोठ सालिह शरह खां मिठू खान शर पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो हुन सां गॾु आहे अलीगुल शर अब्दुल इशाक अब्दुल इसाक शर ऐं चवनि था अदा सलाम क़बूल पवन त वालेकुम असलाम भाउ मुंहिंजा क़बूल पिया तव्हांजा सलाम मुंहिंजे अखियुनि ते ऐं चवनि था त असांखे अनवर विस्तड़ो ऐं नूरमोहन सोलंगीअ जो आवाज़ मी कलाम ॿुधायो हाज़िर मुंहिंजा मिठा ज़रूरु

रऊफ मक्सी खूबसूरत आवाज़ तवजो समातू तो मुझे मिठा साई तुम भी असो में शामिल थी सको था अड़े ही तरीके से जड़े तरीके से अस दोस्त असाजे शो में शामिल थे अदा हारून संदीले की फरमाइश से ही सॉन्ग अस प्ले किया है अदा इंजॉय कजो बुझो मुझे मिठा साई फीडबैक जरूर।

0: पाकिस्तान की।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुप पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाबा है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

ख़राब हुजनि त उहा ज़ाहिरी ख़ूबसूरती घणो वक़्तु क़ाइमु नथी रहे। उन जे उबतड़ सुठो इख़लाक़, नरम गुफ़्तगू ऐं इज़त भरियो रवैयो आम चहिरे वारे इंसान खे बि सभिनी जे दिलनि में जाइ ॾियारे छॾींदो आहे। ख़ूबसूरत चहिरो इंसान जी सुठी सिहत जो बि अक्स हूंदो अथव। साफ़ सुथराई, मुतवाज़न ख़ुराक, मुनासिब निंड ऐं ख़ुशगवार सोच इंसान जे चहिरे ते ताज़गी ऐं रौनक पैदा कनि था। जॾहिं त हसद, कावड़, नफ़रत ऐं परेशानी चहिरे जी ख़ूबसूरती खे आहिस्ते आहिस्ते ख़तमु करे छॾे थी। असुलु ख़ूबसूरती उहा आहे कहिड़ी असुलु ख़ूबसूरती उहा आहे जेका इंसान जे दिलि, ज़बान ऐं अमल मां ज़ाहिर थिए। मुर्क, मुहबत, सुठो इख़लाक ऐं सचाई अहिड़ा ज़ेवर आहिनि जेकी हर चहिरे खे हसीन बणाए छॾीनि था। तंहिं करे असांखे ज़ाहिरी सूंह सां गॾु पंहिंजे इख़लाक ऐं किरदार खे ख़ूबसूरत बनाइण जी कोशिश करणु घुरिजे, छो त हमेशह यादि रखो त ख़ूबसूरत चहिरो नज़रुनि खे त वणंदो आहे पर ख़ूबसूरत किरदारु दिलनि ते राज कंदो आहे।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर।
1: वजीर आजम शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा के फोर स्टार जनरल के अहदे से तरक्की दे छी। तरक्की बाद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांडर मुकर्रर। आमिर रजा के फोर स्टार जनरल के अहदे से तरक्की मिलने से वजीर आजम पारा वादायूं नई जिम्मेवार मिलने से नेक ख्वाहिशन जो इजहार भी कयो। अमेरिका ईरान ते हमला तेज करे छड़िया। चार शहरी शहीद खुजस्तान एवाज बंदर अब्बास करमान कश्म ते हमला कया वया। सैनेट का मौजूद ईरान के दिफाई सलाहतन ते हमला कया वया है। ईरान जो भी अमेरिकी असासन एडन ते जवाबी वार बहरीन उर्दन में अमेरिकी एडन के निशानो बनाया वो। पासदार इनकलाब मौजूद हमलन में अमेरिका जो वो नुकसान थो है।

अमेरिका ईरान में छिकताण बाद आलमी मंडी में तेल महंगो थी वो आलमी मीडिया मौजूद ईरान ते अमेरिकी हमलन में तेजी बाद कच्चे तेल की कीमत $100 फी बैरल का भी वधी वही है। ब्रेंट कच्चो तेल फी बैरल $101 है। मरबान कच्चो तेल $107 फी बैरल विक्रो थी रो है।

कहें मुल्क जा असा मंजमंद करे हर जाने तौर इस्तेमाल करण जा नतीजा खतरनाक थी सकन था। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची चयो आए ट्रंप के बयान ते खुश थींदड़ समझी वठन त हुकूमतन बेन मुल्कन जा असा मंजमंद करण शुरू कया त सबनी जो नुकसान थींदो। सदर ट्रंप ईरानी असा नुकसानन लाए इस्तेमाल करण जी धमकी दिनी आहे।

0: स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी खाते जे डी जी मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन ऑफिस में 1,92,00,000 का वधीक जी करप्शन जो इंकशाफ ऑडिटर जनरल ऑडिट रिपोर्ट कार्रवाई लाइ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी खाते डां मोकले छड़ी। ऑडिट में बिन ऑफिसरन के 9,19,000 रुपया एग्जेक्टिव अलाउंस 28,25,000 रुपयनि जी अलाउंस ऐं 9,33,000 रुपयनि जी पघार अलाउंस अदायगियुनि ते एतिराज़ कयो वियो। ऑफिस जी मुंतकिलीअ ते 39,98,000 बिल्डिंग जे भाड़े जी मद में 52,00,000 पेट्रोल स्टेशनरी प्रिंटिंग ऐं ट्रांसपोर्ट ख़र्चनि में माली ज़ाब्तनि जी भञकड़ी बाबति ऑडिट में निशान रही थी। खाणोट वासी पोरेत नौजवान कंडियारो भरिसां फुर मज़ामत ते क़तल। वारसनि जो मंज़ूराबाद में इंडस हाईवे ते धरणो, ट्रैफिक मुअतल। वारसनि चयो त हथियारबंदनि ट्रक रोके नौजवान एजाज़ कोसो खे गोलियूं हणी क़तल कयो। नौजवान जा क़ातिल गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे। ऐं हिकु वण सिंध मड़ जे नाओ केटीएन न्यूज़ ऐं कावश जे वण पोखण वारे सॾु खे भरपूर मोट। सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ जे असरनि खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारे सॾु ते सिंध वासियुनि ऐलानियल तारीख़ खां अॻु वण लॻाइण शुरू करे छॾिया। केटीएन न्यूज़ ऐं कावश पारां 24 खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण जो सॾु ॾिनल।
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। महफूज और मौसर स्किन केयर, नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

मुंहिंजा मिठा साईं, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करण जे लाइ सिर्फ़ु महिनत ई काफ़ी नाहे, पर सुठी सोच ऐं सुठी गुफ़्तगु बि तमामु अहम आहे। जेकॾहिं हर हाल में मुस्बत सोच रखे ऐं ॿियनि सां सुठे नमूने ॻाल्हाइजे त न रुॻो माण्हुनि जूं दिलियूं खटे सघजनि थियूं, पर पंहिंजी ज़िंदगी में बि तरक़ीअ जा नवां दर खोले सघजनि था। मुस्बत सोच इंसान खे मायूसीअ खां बचाए थी। जेकॾहिं को मसइलो साम्हूं अचे तॾहिं नाउमीद थियण बदिरां उन जो हल ॻोल्हणु घुरिजे। अहिड़ी सोच इंसान खे मज़बूत बणाए थी ऐं अॻिते वधण जो हौसलो ॾिए थी। साॻी तरह मिठा लफ़्ज़ ऐं सुठो इख़लाक इंसान जी शख़्सियत जो ज़ेवर आहिनि। हिकु सुठो जुमिलो कंहिंजे दिलि खे ख़ुशि करे सघे थो, जॾहिं त सख़्तु लहिजो दिलनि में फ़ासिला पैदा करे सघे थो। उन करे हमेशह अदब, एतराम ऐं मुहबत सां ॻाल्हाइणु घुरिजे। यादि रखो, जेको माण्हू सुठो सोचे थो, सुठो ॻाल्हाए थो ऐं नेक अमल करे थो, कामयाबी उन जो मुक़दर बणिजी वेंदी आहे। अचो त अॼु खां उहो अहद करियूं त हर हाल में मुस्बत सोच इख़्तियारु कंदासीं, ॿिए सां सुहिणे इख़लाक सां पेश ईंदासीं ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ खे बहितर बणाइण जी कोशिश जारी रखंदासीं।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म, दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: हलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

त मुंहिंजा वेठासीं कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि, उन्हनि खे बि पंहिंजे प्रोग्राम जी सूंह बणाईंदे हलंदासीं। तव्हांखे ॾे मोहबत ऐं प्यार में जा हीअ मैसेज असां मोकिलिया आहिनि त असांजो बि इहो फ़र्ज़ु थिए थो त असां उन्हनि मैसेजनि खे प्रोग्राम में शामिलु कयूं। त अदा 78 मोरीअ खां राजा हमीर चंद्र पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, ऐं किश्वर कुमार, पवन कुमार ऐं टेलर मास्टर चए थो आज छुटी पए। अच्छा ठीकु आहे, तव्हां पहिरियों मैसेज कयो, मां तव्हां खां टेलर मास्टर जो पुछो त तव्हां इहो चयो त उहो अॼु छुटीअ ते आहे, अच्छा हुनखे तव्हां मोकल ॾिनी आहे ऐं बरसाती मौसम खे उहो इंजॉय करे रहियो आहे, महिरबानी आहे। ऐं तव्हां फौज़िया जे सॉन्ग जी फ़रमाइश कई आहे त फौज़िया जो सॉन्ग मां प्ले करे छॾियो आहे ऐं तव्हांजे मैसेज पढ़ण खां सवाइ, अच्छा उहो तव्हांजे नाले अदा ठीक हुजो, खुश हुजो ऐं क़बूल कजो। ऐं चवनि था त अदा मीरपुर ख़ासि मींहुं बारिश तो नहीं हुई है मगर मौसम अच्छा है। त अहिड़ो ई साॻी सूरत हाल आहे मोरे में, मौसम सुठड़ी आहे, हफ़्स वारी मौसम आहे पर बरसाति नाहे पई। राति चंद कणियूं पयूं हुयूं ऐं उहे सिर्फ़ु चंद कणियूं ई हुयूं ऐं हिन वक़्तु सख़्तु बरसाति जी सॼी सिंध खे ज़रूरत आहे। त तव्हां सभिनी खे चवंदासीं त तव्हां वधि मां वधि दुआगो थियो अलाह जे दर ताला ताला ख़ैर जूं बरसातूं सिंध जे मथां वसाए त जीअं सिंध में जेका पाणी जी खोट जेका फ़सलनि खे हिन वक़्तु तमामु घणी ज़रूरत आहे पाणीअ जी न उहा पूरी थी वञे, ऐं उन खां पोइ जेके जानवर आहिनि उन्हनि जे लाइ बि पाणी जमा थी वञे, जेके पखी आहिनि उहे बि बरसाति जे मौसम खां पोइ पाणी पीअंदा आहिनि ऐं बरसाति में इंजॉय कंदा आहिनि। त सभिनी खे बराबरि जेतिरो मौक़ो मिली वञे त असां बि दुआ गोयूं, तव्हां बि दुआ गो रहिजो त हिन धरतीअ जे मथां अलाह ताला पंहिंजे रहमत जा ककर ज़रूरु वसाए। त महिरबानी अदा किश्वर, तव्हांजी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो। अदा अब्दुरहीम जो मैसेज अची चुको आहे, चवे थो मास्टर मंज़ूर जे कलाम असांखे ॿुधायो त पहिरां मास्टर मंज़ूर ऑलरेडी मां प्ले करे चुको आहियां ऐं उमेदु आहे त तव्हां उहो ॿुधो बि हूंदो ऐं सॉन्ग तव्हांखे पसंदि बि आयो हूंदो। हिन वक़्तु बशीर जतोई जे आवाज़ में हिकिड़ो सॉन्ग आहे मुंहिंजे प्ले लिस्ट में, अचो तव्हांखे उहो थो ॿुधायां।

लमान में तव्हां सभिनी मुंहिंजनि मिठनि प्यारनि भाइरनि ऐं भेनरुनि खे असां भली कार चऊं था त मुंहिंजा मिठा ताईं प्रोग्राम म्यूज़िक मस्तीअ जो बि वक़्तु पहुची वियो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते। वञण खां पहिरीं हमेशा वांगुरु तव्हांखे चवंदासीं त पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखिजो, पंहिंजे दोस्तनि जो, मिटनि माइटनि जो, पंहिंजे पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखिजो। हिन हिन वक़्तु ॾिसो था त केतिरी असांजी सिंधी खे बरसाति जी ज़रूरत आहे ऐं बरसाति न पई पवे। उनजो सबबु ॿुधायांव कहिड़ो अथव, उनजो सबबु इहो अथव त असां पंहिंजे जेका कुदरती नेचुरल जेकी ख़ूबसूरती हुई न उनखे असां ख़तमु करे छॾियो आहे। तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि पंहिंजे ज़हन में ज़रूरु सोचिजो त असांखे हिकिड़ो वणु वढण में सिर्फ़ु हिकु कलाकु लॻंदो आहे, पर उनखे ॿीहर पोखे तयारु करण में 10 साल लॻी वेंदा आहिनि। त उन जे लाइ वणनि जी वाढी बिल्कुलु बंदि कयो, पंहिंजे ओताकुनि में, पंहिंजे घरनि में, पंहिंजे ज़मीनुनि ते, पंहिंजे फसलनि में वधि खां वधि सावक कयो, वण पैदा कयो, वण रखो त ईंदड़ जेके असांजूं नसलूं आहिनि उहे इन क़िस्म जी गर्मी, हिन क़िस्म जो हब्स ऐं हिन क़िस्म जी मौसमी तब्दीलियुनि खां जेको सॼी दुनिया हिन वक़्तु परेशान आहे त उहे उन परेशानी खां बची पवंदा। मतिलबु चवण जो त वण तव्हांखे ज़रूरु खाइणा आहिनि। उन खां पोइ पंहिंजी नियाणियुनि खे ऐं पंहिंजे पुटनि खे दीनी व दुनियावी तालीम ज़रूरु ॾींदा कयो। जुमे जो भलारो ॾींहुं आहे, उन में दुरुद पाक कसरत सां पढ़जो, निमाज़ ते वञिजो ऐं असांखे पंहिंजे दुआउनि में ज़रूरु यादि कजो। त ॿिए प्रोग्राम ते पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलह वाही अलह निगहबान।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा के फोर स्टार जनरल के अहदे से तरक्की दे छी। तरक्की बाद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांडर मुकर्रर आमिर रज़ा के फोर स्टार जनरल के अहदे से तरक्की मिलने से वज़ीर-ए-आज़म पारा वाधायूं नयू जिम्मेवार मिलने से नए ख्वाहिशन जो इज़हार भी कयो। ईरान इराक जरिए अमेरिका की जंग बदी वाली आस रद्द कर छी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की दावा अमेरिकी अखबार मूजिब इराकी वजीर आजम अमेरिकी दौरे तां वापसी बाद ईरान जो दौरो कर ईरानी क्यादत के अमेरिका की जंग बदी वाली आस बाबत आगाह कयो। ईरानी इख्तियार जवाब डींदे आर्जी जंग बंदी कबूल न हूंदी। अमेरिका से गाल पैरिया ही साल्स मौजूद आन आर्जी जंग बंदी से अपना हरमुज जो मसलो हल न। अमेरिका ईरान ते हमला तेज कर छड़ा चार शहरी शहीद हुजस्तान एवाज बंदर अब्बास करमान कशन ते हमला कया वया। सेनेट का मौजूद ईरान के दिफाई सलाहतन ते हमला कया वया। ईरान जो भी अमेरिकी असासन अड्डन ते जवाबी वार बहरीन उर्दन में अमेरिकी अड्डन के निशानो बनाया वो। पासदार इनकलाब मूजिब हमलन में अमेरिका जो वो नुकसान थो है।

अमेरिका ईरान में छिकताण बाद आलमी मंडी में तेल वधिक आलमी मीडिया मौजूद ईरान ते अमेरिकी हमलन में तेजी बाद कच्चे तेल की कीमत $100 फी बैरल का भी वधिक वही थी वही है। बैरल कच्चो तेल फी बैरल $101 है। मरमान कच्चो तेल $107 फी बैरल विक्रो थी रो है। कें मुल्क जहा असासा मंदमंद कर डंड तौर इस्तेमाल कर नतीजा खतरनाक थी सन था। ईरानी परदेही वजीर अब्बास सिराकची है तो ट्रंप के बयान से खुश थन्दड़ समझी वन तो हुकूमत बेन मुल्क असासा मंदमंद कर शुरू कया तो सभी जो नुकसान सदर ट्रंप ईरानी असासा नुकसान ला इस्तेमाल कर धमकी दिनी है।

बबर लोहे में मासूम बारन जे अगवा खिलाफ एहतजाज करण तां गिरफ्तार थियल सोनी पारस लियाकत जलवाणी ऐं बेन के पुलिस अदालत में पेश न कयो। अदालत पारां पुलिस ते सख्त कावड़ जो इज़हार। बुधणी सुभाणे ताईं मुल्तवी अदालत चयो त गिरफ़्तार कयलनि खे सुभाणे अदालत में पेश न कयो वियो त डीआईजी के ज़ाती हैसियत में तलब कयो वेंदो।

0: मरसू मरसू सिंध न ॾेसू पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी हिदायत ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पीपल्स पार्टीअ जूं रैलियूं लाड़काणो कंबर कंदकोट कशमोर खैरपुर शहदादकोट मिठी कोट गुलाम मोहम्मद बावड़ो तंगवाणी नओं देरो डोकरी ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं कढियूं वयूं। अॻवाणनि चयो त भारत पाकिस्तान जो पाणी रोके रहियो आहे, सिंधु दरिया खे रोकण जो कंहिंखे बि इजाज़त न ॾिनी वेंदी। मोदी ॿुधी छॾे त सिंधु दरिया ते पाकिस्तान जो हक़ आहे, पाणीअ ते धाड़ो क़बूल न आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, मा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

राबत ज़रिए अमेरिका जी जंग बदी वारी आछ रद्द करे छॾी। अमेरिकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स जी दावा, अमेरिकी अख़बार मूजिबि इराकी वज़ीर आज़म अमेरिकी दौरे तां वापसी बाद ईरान जो दौरो करे ईरानी क़यादत खे अमेरिका जी जंग बंदी वारी आछ बाबति आगाह कयो। ईरानी इख़्तियारनि मूजिबि जवाब ॾींदे चयो त आर्ज़ी जंग बदी क़बूल न हूंदी। अमेरिका सां ॻाल्हियुनि लाइ पहिरियां ई साल्स मौजूदु आहे। आर्ज़ी जंग बंदीअ सां आबनार जो मसइलो हल न थींदो। अमेरिका ईरान ते हमला तेज करे छॾिया। चार शहरी शहीद खोस्ता नवाज बंदर अब्बास करमान कस्म ते हमला कया विया। सेनेट खां मूजिबि ईरान जी दिफ़ाई सलाहियतनि ते हमला कया विया आहिनि। ईरान जो बि अमेरिकी असासन ऐं अॾनि ते जवाबी वार। बहरीन ऐं उर्दन में अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। पासदार इनकलाब मूजिबि हमलनि में अमेरिका जो वॾो नुक़सान थियो आहे। कंहिं मुल्क जा असासा मंझ मंद करे ॾंड तौर इस्तेमाल करण जा नतीजा ख़तरनाक थी सघनि था। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त ट्रंप जे बयान ते ख़ुशि थींदड़ सम्झी वठनि त हुकूमती ॿियनि मुल्कनि जा असासा मंझ मंद करण शुरू कया त सभिनी जो नुक़सान थींदो। सदर ट्रंप ईरानी असासा नुक़सान लाइ इस्तेमाल करण जी धमकी ॾिनी आहे। अमेरिका ऐं ईरान में छकताण बाद आलमी मंडीअ में तेल वधीक महांगो थी वियो। आलमी मीडिया मूजिबि ईरान ते अमेरिकी हमलनि में तेज़ी बाद कचे तेल जी क़ीमत 100 डॉलर फी बैरल खां बि वधी वई आहे। बैरेंट कचो तेल फी बैरल 101 डॉलर ऐं मरबान कचो तेल 107 डॉलर फी बैरल विकिरो थी रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा खे 4-स्टार जनरल जे उहिदे ते तरक़ी ॾेई छॾी। तरक़ी बाद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्टेट जग कमांडर मुक़ररु। आमिर रज़ा खे 4-स्टार जनरल जे उहिदे ते तरक़ी मिलण ते वज़ीर आज़म पारां वाधायूं, नयूं ज़िमेवारियूं मिलण ते नेक ख़्वाहिशनि जो इज़हार बि कयो। सदर आसिफ ज़रदारीअ सां बलूचिस्तान जे सूबाई वज़ीरनि जी बिलावल हाउस में मुलाक़ात। बलूचिस्तान में अमुन अमान जी सूरतहाल ऐं तरक़ियाती कमनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल। सदर आसिफ ज़रदारी पारां बलूचिस्तान में तरक़ी जो अमल तेज़ करण ते ज़ोर भरियो। सूबाई वज़ीरनि खे अवाम सां राब्तनि में रहण जी हिदायत।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0606-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

اساں ملک مدینے جا پاندیڑا جکھے ہلنا

आसम जी आका जीरे पुजायो रहमान है आस अब्दुर रहमान जी मौला जी।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एटमाद, अइम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक

0: रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: उम्मीद के दिए जलते
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013803847
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान में एक मंसूबे तहत दहशत गर्दी थी रही है। पाकिस्तान में थींदड़ दहशत गर्दी में भारत मुलविस है। पाड़ेसरी मुल्क भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बलूचिस्तान बाबत वर्कशॉप के खिताब कदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चया है अफगान रजीम दहशतगर्दन के रोकण में नाकाम व्यून सभी के गर्ज दहशतगर्दी जो मुकाबलो करो पवन। बलूचिस्तान के हुकूमत सदाई वफाक की मजबूती लाय कम किया। बलूचिस्तान की तरक्की मुल्की तरक्की से गंढियल है। खिते में अमुन के क्याम लाय पाकिस्तान जो किरदार दुनिया के सामू है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एसाक डार जो कोशिशों सारा जोगियो।

अमेरिका ईरान ते हमला तेज करे छड़िया चार शहरी शहीद खोस्तान एवाज बंदर अब्बास करमान कश्मीर ते हमला कया वया सेनेट काम मौजूद ईरान के दिफाई सलाहतन ते हमला कया वया है ईरान जो भी अमेरिकी असासन अडन ते भी जवाबी वार बहरीन उर्दन ने अमेरिकी अडन के निशानो बनाया वो पासदार इनकलाब मौजूद हमलन में अमेरिका जो वो नुकसान थो है कें मुल्क जासा मंज बंद कर डंड तौर इस्तेमाल करने जा नतीजा खतरनाक थी सकन था ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची है ट्रंप के बयान से खुश थींदड़ समझी वठन तो हुकूमत बेन मुल्क जहा असासा मंज बंद कर शुरू कया तो सभी जो नुकसान थो सदर ट्रंप ईरानी असासा नुकसान ला इस्तेमाल कर धमकी डी है अमेरिका ईरान में छिकताण बाद आलमी मंडी में तेल वधिक महंगो थी वयो आलमी मीडिया मौजूद ईरान ते अमेरिकी हमलन में तेजी बाद कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर फी बैरल का भी वधी वई है बैरल कच्चो तेल फी बैरल 100 डॉलर एक मरबान कच्चो तेल 107 डॉलर फी बैरल विकरो थी रो है वजीर आजम शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा के फोर स्टार जनरल के अहदे से तरक्की दई छी तरक्की बाद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा कमांडर नेशनल स्टेट जग कमांडर मुकर्रर आमिर रजा के फोर स्टार जनरल के अहदे से तरक्की मिलने से वजीर आजम पारा वाधायूं नयू जिम्मेवार मिलने से नए ख्वाहिशन जो इजहार भी किया वो सदर आसिफ जरदारी से बलूचिस्तान के सूबाई वजीर की बिलावल हाउस में मुलाकात बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरतहाल तरक्याती कम के हवाले से गाल बोल सदर आसिफ जरदारी पारा बलूचिस्तान में तरक्की जो अमल तेज करने ते जोर भर सूबाई वजीरन के अवाम से राबतन में भी रहने की हिदायत

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज़ टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
5: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-8051।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

sun. Go ahead and

0: पाकिस्तान में एक मंसूबे तय दहशतगर्दी थी रही है। पाकिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। पाड़ेसरी मुल्क भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बलूचिस्तान बाबत वर्कशॉप के खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चवाए त अफगान रजीम दहशतगर्दन के रोकण में नाकाम वयूं आइन। सभी के गर्जी दहशतगर्दी जो मुकाबलो करणो पवंदो। बलूचिस्तान की हुकूमत सदाई वफाक की मजबूती लाए कम किया है। बलूचिस्तान की तरक्की मुल्की तरक्की से गंढ़ियल है। खिते में अमन की क्याम लाए पाकिस्तान जो किरदार दुनिया के सामूँ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सागदार जो कोशिशों सारा जोगियो हैं। ईरान इराक जरिए अमेरिका की जंग बंदी करे छी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स जे दावा अमेरिकी अखबार मूजिब इराकी वजीर आजम अमेरिकी दौरे त वापसी बाद ईरान जो दौरो करे ईरानी क्यादत के अमेरिका की जंग बंदी वारी आछ बाबत आगाह कयो। ईरानी इख्तियारन जवाब डींदे चयो त आरजी जंग बंदी कबूल न हूंदी। अमेरिका सां गालिन लाइ पहिरियां ही साल्स मौजूद आहिन। आरजी जंग बंदीअ सां आबन आर्मज जो मसलो हल न थींदो। अमेरिका ईरान ते हमला तेज करे छड़िया। चार शहरी शहीद खुजस्तान एवाज बंदर अब्बास करमान कश्म ते हमला कया वया। सेनेट काम मूजिब ईरान जी दिफाई सलाहियतन ते हमला कया वया हैं। ईरान जो भी अमेरिकी असासन अडन ते जवाबी वार बहरीन उर्दन में अमेरिकी अडन के निशानो बनाया वयो। पाजार इनकलाब मूजिब हमलन में अमेरिका जो वडो नुकसान थियो है। कें मुल्क जा असासा मंजमंद करण डंड तौर इस्तेमाल करण जा नतीजा खतरनाक थी सकन था। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकसी चयो है त ट्रंप जे बयान ते खुश थींदड़ समझी वठन त हुकूमत बेन मुल्कन जा असासा मंजमंद करण शुरू कया त सभिनी जो नुकसान थींदो। सदर ट्रंप ईरानी असासा नुकसानन लाइ इस्तेमाल करण जी धमकी डि॒नी आहे। अमेरिका ईरान में छिकताण बाद आलमी मंडी में तेल वधीक महांगो थी वयो। आलमी मीडिया मूजिब ईरान ते अमेरिकी हमलन में तेजी बाद कच्चे तेल की कीमत $100 फी बैरल का भी वधीक थी वई है। ब्रेंट कच्चो तेल फी बैरल $101 है। मुरबान कच्चो तेल $107 फी बैरल विक्रो थी रहो है। वजीर आजम शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा के 4-स्टार जनरल के अहदे से तरक्की दे छी। तरक्की बाद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांडर मुकरर। आमिर रजा के 4-स्टार जनरल के अहदे से तरक्की मिलने से वजीर आजम पारा वाधायूं नयू जिम्मेवार मिलने से नए ख्वाहिशन जो इजहार भी कयो। सिक्योरिटी फोर्सिस जो बलूचिस्तान में ऑपरेशन अलज़म जारी। हिंदुस्तानी फितने जा चार दहशतगर्द मारजी वया। सिक्योरिटी जरिए मौजूद मस्कोंग के इलाके करकोचा में ऑपरेशन दौरान चार दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो कयो वयो। ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दन वटां वडी मकदार में हथियार भी हथ कया आहिन। तेल ए गैस पैदा कंदड़ सूबन के आइनी हक न डेण आइन की संगीन भंजकड़ी है। सिंध में रोजानी 3.70 अरब रुपये जो तेल निकरे तो पर सिंध के कुछ भी नो डो वे। कंपनियों कारपोरेशन्स मुनाफो कमाए रही हैं। आवाम भुख मरी रो है। सेनेट कमेटी के चेयरमैन जमीर घुमरो है त वफाकी हुकूमत सूबन के तेल ए गैस जो पैसा छो न डेई रही है। अरणी आइनी तरमीम ते भी अमल न थी रहो है। सेनेट कमेटी चयो त गैर जरूरी वजारतू खत्म करे सालियानो 5,000 अरब बचाए सकजन था। सेनेटर जान मोहम्मद बुलेदी चयो त मुल्क के माली बोहरान मां कढ़ण लाइ हुकूमती खर्चन में वाज़े घटताई जरूरी है। नेप केस बुधण जो इख्तियार असांजो न आहे। नेप केसनि में ज़मानत वारनि दरख़्वास्तनि ऐं अपीलनि ते ॿुधणी वफ़ाक़ी आइनी अदालत कंदी। सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो जारी करे छॾियो। सुप्रीम कोर्ट जे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जी सरबराई में 3-रुकनी बेंच फ़ैसिलो जारी कयो। फ़ैसिले मूजिब नेप केसनि में ज़मानत बाबति हाई कोर्ट जे फ़ैसिलो ख़िलाफ़ अपीलूं ॿुधण जो इख़्तियार सुप्रीम कोर्ट जो न पर वफ़ाक़ी आइनी अदालत जो आहे। नेप केसनि जूं समूरियूं अपीलूं वफ़ाक़ी आइनी अदालत ॾांहुं मुंतक़िल कयूं वञनि। कानून टोड़ींदड़ ऐं ॾोह कंदड़ खे कानून जे कटेड़े में पेश करणु पुलिस जी ज़िमेवारी आहे। सिंध पुलिस जा जवान ऐं आफ़िसर बहादुरीअ सां दहशतगर्दीअ जो मुक़ाबिलो करे रहिया आहिनि। कराची में सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस जी तरबियत मुकमिल कंदड़ जवाननि खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त सूबे में अमुन जी ज़िमेवारी पुलिस जी आहे। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ बि पुलिस जो किरदार साराह जोॻो आहे। पुलिस तरबियत खे बहितर करण सां गॾु जदीद हथियार ऐं टेक्नोलॉजी बि ॾिनी वेंदी। मरसूं सिंध न ॾेसूं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी हिदायत ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पीपल्स पार्टी जूं रैलियूं लाड़काणो, कंबर, कंदकोट, कश्मोर, खैरपुर, शादात कोट, मिठी कोट, गुलाम मोहम्मद, बावड़ो, तंगवाणी, नओं देरो, ॾोकरी, डिगड़ी, गली लखी, गुलाम शाह, ठुल, रतो देरो, कंबर, सिंधड़ी, वारे में बि पीपी पारां रैलियूं कढियूं वयूं। गढ़ी यासी, नसीराबाद, फकीराबाद, कुबो सईद खान में बि रैलियूं कढियूं वयूं। रैलियुनि में भारत ऐं मोदी ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई वई। अॻवाननि चयो त मोदी ॿुधी छॾे, सिंधु दरिया ते पाकिस्तान जो हक़ आहे, पाणीअ ते धाड़ो कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। बबरलोए में मासूम ॿारनि जे अॻवा ख़िलाफ़ एहतजाज करण तां गिरफ़्तार थियल सोणी पारस लियाकत जलबाणी ऐं ॿियनि खे पुलिस अदालत में पेश न कयो। अदालत पारां पुलिस ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। गिरफ़्तार कयलनि खे सुभाणे पेश करण जो हुकुम। अदालत चयो त पुरमन एहतजाज ते तशद्दुद इंसानी हक़नि जे ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे, ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। गिरफ़्तार कयलनि खे सुभाणे अदालत में पेश न कयो वियो त डीआईजी खे ज़ाती हैसियत में तलब कयो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर आचर ऐं सूमर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592-120

0: 380 83 47।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ AR

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

0: तव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ ग्लो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफ्यो, ख़ूबसूरत थियण वच ब्यूट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार, ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359212।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385698569।

0: इलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगरलस डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: जवाब सुनेंगे।
1: रहा है पाक भारत मुलविस है पाड़ेसरी मुल्क के भी समझाने की कोशिश कर रहा आयु। बलोचिस्तान बाबत वर्कशॉप के खिताब कंदे वजीर आजम अफगान रजीम दहशतगर्दन के रोकने में नाकाम वयुन सभी के गर्जी दहशतगर्दी जो मुकाबलो करण पवो। बलोचिस्तान की हुकूमत सदाई वफाक की मजबूती लाए कम किया है। बलोचिस्तान की तरक्की मुल्की तरक्की से गंढियल है। खिते में अमन के क्याम लाए पाकिस्तान जो किरदार दुनिया के सामू है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसाक डार जो कोशिशों सराह जोगियो।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306।

0: 96151 कहीं भी बीमारी बाबत अहां डॉक्टर साहब का मालूमात वठी सको था अहां डॉक्टर साहब का पूछी सको था का भी बीमारी लाइलाज ना है कदें भी मायूस ना है थियणो मायूसी कुफर है प्रोग्राम है सेहत जी गाल जी मेहरापुर FM 94 कहीं भी बीमारी बाबत तवा के मालूमात वठनी है तो 037 ते तवा सिलसिलो जारी है पर डॉक्टर साहब से मुखातिब थिनासी इन खान बाद में दोस्तन यू कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल कंदा हलंदासी डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमो छंछर आचर ए सूमर ते सुबह जो 10 खान शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक सामू वधन पोटरा पे कोटली कबीर रोड मेहरापुर जो आहन असी डॉक्टर साहब के खुश आमदीद चौं था जो डॉक्टर साहब जो डॉक्टर साहब पंजे मौजूद बुथा पंजे क्लिनिक ते डेज केड़ा शहर में
1: खान जमाने रहिम रप थो रोजी दिन ते नशर थे अस जर्मन होम्यो के वा के खबर आए हफ्ते जा 6 दिन मेहरापुर शहर में जो दी चाचर जो दी कफीस फ्री जको सो रखी है
0: तमाम बेहतरीन अमल
1: से आई मेडिसिन मरीज के स्टोर तो بعد میں پیٹرول پمپ کوٹری روڈ میراپور شہر میں ان کے علاوہ موضوعات کے حوالے سے گال شیئر کرتا ہوں تو پروگرام مقصد یہ ہوں تو اویئرنیس یا نسخہ ہو جائے کر سکنا کل جی ماہ

0: ठीक है न दस्ती साहब, घबराई न डॉक्टर साहब कने इलाज मौजूद है। डॉक्टर साहब ते को आप भी बुद्धई थी पर ते को नंडड़ी है देख 1.5 साल दी उंगो तकलीफ है न ओतका नहीं पालेंदी न इतला परे। हां
1: जाए वो कमजोर भी आए दवा भी डाढी कराया।
0: हाल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस तुरा दिखला वंजस। ठीक है न मेरा साईं, डॉक्टर साहब को सुपाई है तो नंडड़ी गिन है, इंशाल्लाह रिजल्ट मिल सही ते को डूड यहां जा पोल बुद्धई से भी हफ्ते प्रोग्राम च कॉल करूं तो साईं माशाल्लाह नंडड़ी को फर्क आ गए।
1: ठीक है रे,
0: ठीक है न फिर माशाल्लाह
2: जैसे बिल्कुल एक त जी नंढड़ो बार है उन हुई भी अस पेशेंट के ये चाहे नंढड़ो बार रूबरू डेखारे वे उन अलावा असा ते जैस तीन पहुंचन त एक तो है सो उन फीड से होंगी है जाहिर या नंढड़ो बार फीड से होंद तो उन मदर के जो है सो अमड़ के परहेज करण घुर्जे। चावर गोश्त खट्टी शूं वगैरह अड़ी शूं इस्तेमाल हरगिज न करण खपन जैसा जो है सो या तकलीफ जो है सो डीं डी अना उनमें वाधारो अची वो इन कर सो आई जन मल उन वेंझारन त ख्याल से उन कन्न की सफाई कर या कन में कपह वी जो कन में एक्स्ट्रा पानी वगैरह जो है सो न पवे बरूबरू डेखारन तो उनकी दवा।
0: प्रोग्राम है सेहत की गाल छी मेहरापुर एफएम 94 जो आवाज 0301-96-8051 असो लाइव कॉल जो नंबर है। प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण साहब जिनको 30 साल तजुर्बो है, मोस्ट सीनियर डॉक्टर है, इस्लामाबाद का डॉक्टर साहब की शुरुआत थियल है, इस्लामाबाद कराची हैदराबाद मोरो मेहरापुर नवाबशाह पूरे पंजाब का वी कर पूरे बलोचिस्तान जहाँ भी डॉक्टर साहब वट मरीज इंदा गुजदार का वी कर झलमंगसी बलोचिस्तान कोयटा का डॉक्टर साहब वट चंदा मेहरापुर शहर में डॉक्टर साहब की क्लिनिक है। जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक जर्मनी जो मुल्क है उनकी फ्रेंचाइज है डॉक्टर साहब की उनसा वाबस्ता है जर्मनी से डॉक्टर साहब की फ्रेंचाइज है जर्मन होम्योपैथिक वन की उतरे डॉक्टर साहब की क्लिनिक है मेहरापुर में डॉक्टर साहब के तावन से इतने यह फ्रेंचाइज खोली वही अलहमदुल्ला उन चौ साल हले तो पो तो काफ़ी मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। जो मेहरापुर में डॉक्टर साहब के 6 साल थे डॉक्टर साहब उन टाइम जो अच कर फ्रेंचाइज इतने खोल रही अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह साईं की जात शिफा दियण वाली है तो इं ही थन्द है तो शिफा अल्लाह साईं की जात रही है इलाज डॉक्टर कन्द है। काफ़ी अड़ा मरीज आन जो सेहतयाब थे तुम्हारे प्रोग्राम में बजरिया लाइव कॉल शामिल थी सको था 0301-96-8051 एक कॉलर लाइन से मौजूद है कॉल की तरफ इंदी जी फेसबुक जरिए दोस्त कदन उनकी भी मेहरबानी है। मुझी पर्सनल आई डी है ADV हाकिम अली जिसकानी ADV हाकिम अली जिसकानी उन लाइव इन वक्त हले पो शेयर भी कर सको था कमेंट्स भी जरूर सवाल कर सको था कमेंट्स भी प्रोग्राम में जरूर शामिल कह हल्दी हलूँ था। मौजूदा है असलम साईं मुझा केर साहब पियो गलाए
3: सर मोहम्मद सचल कांधड़ो पियो गलाया
0: खुशामदी चों था मोहम्मद सचल कांधड़ो साहब किथा पियो गलाए मुजो साईं
3: थरी मीरवा का साईं
0: छा पुछण चाहिदो डॉक्टर साहब का मुजा दा
3: सो एक रिक्वेस्ट आए तो मुजो थोड़ो वजन जो कोसो वधी चुको आए एतरी उम्र भी ना है अने मा जो कोसो डॉक्टर साहब के मा रिक्वेस्ट कनो तो मा जो वजन कम करने के लिए करो तरीको इस्तेमाल कर सकांदो
0: तो आज में भी कॉल कई ने मुदे
3: जी जी वाह
0: अग में भी कॉल कई हुई ना
3: हां हां बिल्कुल
0: तो डॉक्टर साहब के दिखा रहे हो
3: ना डॉक्टर साहब के दिखा रहे ना
0: खाली मशवरे में छा थिनो मुंजा मिठा भा अमल कबो आ जे भी दिसो ना ही सेहत आही सेहत बाबत तवा जेको भी मशवरो वठो था या जेको दिसो ना एकड़ो दवा ता जे घर पया थी ता पंदो कोन त दवा ता के उते पई जगह दे ता उन के दिसी करे रिजल्ट कोन दा वठी सको ना मुंजा सजन
3: बिल्कुल
0: खाली मशवरो वी छो हर दफे इन को भी फायद ना है डॉक्टर साहब के चवं तो तक बुधा तो ठीक है मुझे भा बाकी असल प्रॉपर इन इलाज मौजूद है बिना साइड इफेक्ट के ठीक है को भी साइड इफेक्ट ना है डॉक्टर साहब वट दवा मौजूद है रूबरू दिखारे वो हल अचो ट्रीटमेंट करा पो वजन वगैरह डॉक्टर साहब हर शे चेक कह वजन वाले जो वजन चेक कह वेट कांडो डॉक्टर साहब वो कद जो ना वो कद चेक कह रूबरू दिखारे
2: एक गाल भी वाजे कंदा हलो तो असा वट होम्योपैथिक में कड़े भी इलाज गाल क्यों मर्ज में इसमें ये थिंदो है मेडिकल में त परे खा मेडिकल में दवाई बुधाई वेंदी है भाई खंग थियो तो तमा फलाणो सिरप पी छियो या कड़ी तकलीफ थे तो ही होम्योपैथिक में मरीज की हिस्ट्री वरती वेंदी है उनके कद उन बुत उन कलर उन कंडीशन के मुताबिक जो है सो उन हेरेडिटी खानदानी हिसाब से उनके बाद में जो है सो उन टेस्ट

0: वग़ैरह ॾिसी करे पोइ जेको आहे सो दवा ॾिनी वेंदी आहे, रिकमेंड कई वेंदी आहे। ईअं हरगिज़ दवा ॿुधाई न वेंदी आहे कंहिं बि पेशेंट खे। असां पंहिंजे 30 सालनि में ईअं घर वेठे कंहिंखे बि दवा, इवन उहो पेशेंट हे त फ़ोन ते पुछे थो पर असां वटि केरु ईंदो आहे ऐं चवंदो आहे त असांखे दवा ॾियो त असां उनखे बि दवा फलाण जी घर वेठे जी न ॾींदा आहियूं। हालांकि हू फीस बि ॾींदा आहिनि, लेकिन सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिन जे करे जो उन पेशेंट खे रूबरू ॾिसणो पवंदो आहे, हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि त हिन जे लाइ ज़ाहिर आहे उनजो वजूह बि ॿुधाईंदुसि त कहिड़ी वजूहात हूंदियूं आहिनि। सो इन जे करे अदे खे यही रिक्वेस्ट आहे त रूबरू ॾेखारे वञनि, वॾी महिरबानी।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, चीह मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजी समातुनि में पहुचे पियो। अहसान लगारी साहिबु मोरो खां असां गॾु आहिनि। इन खां अलावा ॻोठु मोहम्मद ॻोठु वलीदाद खान लुंड खां मोहम्मद सिद्दीक लुंड प्रोग्राम ॿुधे पियो। वली उल्लास सिद्दीकी साहबु असांजो प्रोग्राम ॿुधे पियो। गॾे जी खां खे भली कार चऊं था सभिनी दोस्तनि खे, जेके दोस्त फेसबुक ज़रिए असां सां गॾु आहिनि। वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। गॾु गॾु जो ॿुधंदा रहो जीअं मेहरापुर FM 94।

खूबसूरतीअ जो असल राज़ सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहं कुदरती

0: आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फितनतुल खारिज दहशत गर्दन जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक में पुलिस चेक पोस्ट से बोसलानो हमलो, 15 जवान शहीद, सिक्योरिटी फोर्सेज की बक्सेर असरायती कार्रवाई दहशत गर्दन जा नापाक इरादा नाकाम बनाए छाया। जवानन गैर मामूली जुरत पेशेवरानी महारत से फरार थन्दड़ 12 खारिजियन के जन्म भेड़ो कर छो। ISPR मूजिब दहशतगर्दन बारूद से भरल गाड़ी चेक पोस्ट की हिफाजती भित से टकराए छी। नतीजे में 15 बहादुर जवानन शहादत जो जाम नोश कियो। शहीद थियलन में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार, बेले खाते जो एक ऑफिसर शामिल आन। बेन दहशतगर्दन की गोला खात्मे लाए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। बिलावल साई कावड़ नक जो ही कश्मीर न पर कश्मीर मीरपुर खास न पर मीरपुर है। सियासत में हल्कन फुल्कन जुमलन की वेठ थियण घुर्जे पर वेढ़ न थियण घुर्जे। नून लीग का सिवाय बे कें भी कश्मीर लाए कुछ भी ना कयो। मीरपुर समेत समूरी कश्मीर की तकदीर बदलाए छींदी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो मीरपुर में चूंड जलसे का खिताब। नवाज शरीफ आजाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुजन घुर्जे। दिल ए कैंसर जो अस्पतालों भी कायम थियण घुर्जन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खिताब कन्दे आजाद कश्मीर की चूंड में नून लीग भरपूर नमूने कामयाबी मानी दी। कश्मीर में सब कुछ है, रुगो एक ही खोट है त नवाज शरीफ की हुकूमत ना है। कश्मीर में वसीलन जज्बे की खोट न पर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की खोट है। आजाद कश्मीर में नून लीग सभी का कोई खड़ी वी। पाकिस्तान में एक मंसूबे तहत दहशतगर्दी थी रही है। पाकिस्तान में थन्दड़ दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। पाड़ेसरी मुल्क के भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बलोचिस्तान बाबत वर्कशॉप के खिताब कन्दे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है अफगान रिजीम दहशतगर्दन के रोकण में नाकाम वन। सभी के गजी दहशतगर्दी जो मुकाबलो करणो पवो। बलोचिस्तान की हुकूमत सदाई वफाक की मजबूती लाय कम किया है। बलोचिस्तान की तरक्की मुल्की तरक्की से गंढियल है। खत्े में अमन के क्याम लाए पाकिस्तान जो किरदार दुनिया के सामू है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर इसाक डार जो कोशिशों सारा जो भी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सब का वे डेटा सेंटर स्काई 47 कराक्रम हाई वन जो इफ्तिताह कर छो। डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा होस्टिंग ए डिजिटल खिदमत लाए मजबूत बुनियाद फराहम कद। सेंटर हथराद जहानत मशीन लर्निंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो घुर्जू पूरी करने की सलाहियत रखे तो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है मार्काक में कामयाबी मुल्की तारीख जो असीम तरीन लम्हो हो। दुखियन चैलेंजेस जो हौसले से मुकाबलो कर मार्काक जड़ा तारीखी कारनामा जन्म वा लागी तो। मेहनत अड़न असीम मनसूबन के हकीकत जो रूप दीन्दी है। स्काई 47 जड़ा मनसूबा पाकिस्तान के मुस्तबिल की जमानत आया।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा वट जगह जो डारियों जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9186-850।
1: अदा
2: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
1: न? अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मिरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मिरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मिरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 0242-460100।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: एलोवेरा फैन
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं। आप

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, आईमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा जगह जो डारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत होंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 0320-18-00-003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
4: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
8: 0301-399-2836।
4: मोहम्मद उमेर गोरी, 0319-1500।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, ठरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: 96 851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94